0: 참는 그 오, 그냥 아무 사지 제가 내 코사니 아 찾을라 구수 아무도 떠라이세 아보 메라 모르기 동의죠 뭐 어떤 소리만 빼야 뭐 아보 미 동의자 메라 모르다 나 하리 자디 아보는 하느냐 아보 사이가 되고 만에 앞으로 가이드 사무에는 꼭 사무에 있는 버럭을 이만 강아 정말로 심히 있다 나치기도 안 북한비싱이 꼭 북한비싱이 여분상 나요 안 나이 정상 나요 그러냐 사무엘은 가이드를 같이 꼭 사무에 아보 사무엘 16이 세벤노 꼭 정수장고
1: 이게
0: 매담 아버님 덕에 이 신이 나이 통문승 버들고 큰 나이 통문을 아니 묵항 아니 자꾸 그런 말씀 왜 나이 통이야 아니 통문뚱나로 시더라는 게
1: 아버는
0: 아방 나 두기 미야다고
1: 마이너스 포인트 하나 빠졌다
0: 알아나 이양 그린 해충 해서는 아니
1: 좀 함이야 걔는 부위
0: 거기네 함벌네스 그대 꼭 아버님 분여고 가야 걔는 나 두기 미야
1: 아버나
0: 아버님 뭐야 아선 나 두몽 그치니 카비칭이 아 그린 아버님 나 두몽 그치니 함간 나고 아지승 아버님 사쪽으로 해 그치니 뭐 강 제스펀디 가이드 선호 발아이 스페셜 캔 우스남카 나이토 캔 우스남카 능 부하이니 샤크도 부하이니 샤쿠 아브나 생아스 원투 페크리 능 니톰 타함 꼭 사마니 스마토 그때 버럭에 타함 대화하라 아무튼이 나서
1: 아브나 미타
0: 아스 사원에 빠르 카메라
1: 너 함바이 함바이 벨라이 푼 카함 아오 게 앙카히노 승치니 버럭 조토노 야쿵야 카함 kai acai kang keno bono no angke kaham ni mano karon tam ni mani yakung yak kaham tomung kaham bukha kaham tong na kreng ob hai borok no nang ko go chini je chini takok sai thang mani bukha bisin ni simi je kaham ob hai borok no sing kaham ni mano hello
2: hello
1: fun kaham takok no
2: ani puya ko hamne ko ko kono na habta gan de call down thang ko bin hakata
1: ओ अच्छा अच्छा आं तो रिसीव खाय गया हाय पनो खरां खाना लिया ता
2: अच्छा जा जे तुन खंता आं जाबो आं गुलाबा के दिन मुरे सै तो तब
1: आं
2: तब आगत
1: ओ अच्छा आगत लानि बियांग
2: आगत लाव मिया बुक ओले तिन खाम पुरु के कलाई ने बिच में खे दे रहा
1: हूं ओ माय
2: गॉड नो नो नो नो नो करो
1: ओ अच्छा अच्छा
2: आओ किनी तो तुम्ही कोकने शेर शावन के
1: आ आ द द तक सारे कोण बाहेर बोंग खजानी सॉरी
2: आणि सॉरी के के को बिजी बाई या लके काम पछिन फप थाके बिजी बाई ने बिजी या या फेबनी को जे को कोण मुता नु या रे छापला
1: द आ कोण द साखा बेले काम को कोण द सारी
2: आओ
1: आ कोण
2: न सो शब्द का नाही थो नाही थो तुम ताजीव किनी का कल्पना अंदर बिस्किट वाले तो साइकिल का बात साला तो मोटो के तो केवल कुन कोई क्या तो शाव मैं साले तो को खटा जाते ही
1: बात दो साले से
2: ना तो तो बिल्कुल प्रकार ना तो तो अब किनी जहर ना तो बिल्कुल ना तो बा नॉनी ना तो जीके ना तो पौधा ना तो हाँ इसमें ना तो तो ना तो तो चीज ना तो लोग का बिचिनो जिन पकाने ये नहीं था वे कार्य था मैं सोच रहा हूँ अब उसे आखों में ना ढूंढ ता हाँ बिचिन ना था बाम मुख ना था बा आ बुकुक ना था वो खोल ना था तो विभिन्न ना था तो वो ना था दूसरे बिचिनो तो आखों ना था क्या अब उन ता ये बिचिन ये तो रहता जिन्हें बिनी माइंड बिनी वो अपने शिव सबके निश्चित हो गए कुंग ना तो अपने ना पता ना तो एक बार भी कुछ ताई ना तो करे वो बांग जी बाबे बोलो ना शीज़ कहे का को तो कसम कहे यो कुम्मन ना करे गुज़ा करे यो हाँ खाया को बाग करे यो तो बस आ खाया को बब बिजी ने बिनी मान बिनी तो इतु काम कर बोल मोल ना तो बा आपस ला तो को चलता है दि� बरोनी ना था वो सब बिनी तो इतने बिनी का आकार बिनी माइंड बिनी चलो तब बिनी आसान ना चलो अब उसे जो चीन ऐसे तो तो नो आ कॉल में तो ये बाउंस हो इतना कॉल काम तो ना तुम बिस्ती का तुम आकार तो ना तुम काम तो ना तुम एक बिस्ती को बिस्ता को
1: ये
2: कहीं हम भाई कॉल में तो ना हम भाई कोई
1: बात तो ना बिस्ती

लाङजाक नै मल्टिटास्किङ स्टाफ ते आबुनि बागै कायदक लाङजाक नै जेनेरल लगनि बागै कायथाम ओबीसी रन बागै कायनै ते आबुनि कारिफानो UWS रंनि बागै कायसा उमरंनि नांनाय बीसी टीचारनि सिमि नैजि बाजरा आबुनि बागै बोर्ड एग्जाम एबा खायबा इउनिभार्सिटी लेभेल जेसके पनो इंडिया हमानि न मेट्रिकुलेशन आवहाय पास नानि नांनाय तमु अब नि जरा अंखा पाइथाक सालमारी थामचिनि बिसिंगन एम्प्लॉयमेंट न्यूज नि बिसिं जे अंखर जाक दे तमनि आबुनि बिसिंगन नरक एप्लाई मा खालायनाय जों नायनो थाखाय गोबां मा अजराव आचुक थायो दङ गाय नरक आबुनि बागै वेबसाइट दगबो थांनाय मानिनाय तमु वेबसाइट नायनो थाखाय www.txcindia.gov.in ओ जगह बनाए मना या बोलो कारीफन हो est-utxc@nic.in आज जगह उन्होंने रखते हैं ना क्या अंकल है ना है उन्होंने रख नए मना है वेबसाइट नो बा आओ गंगाई सं असक जोरा तो साइमन लाइक है गंगाई ते बो और जोरा वो तो साइमन निभागे हिंगांगे सं तो उनको फिर आंगो जोरा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ तो साइन तो अपनो करे इनफॉरमेशन आने थाने जेतों मनी थाईशिंगो तांसना निशेप मालिया बा गंगाई आंग और जोरा इनफॉरमेशन वो किसा साइन हुआ ना गे इनफॉरमेशन तोंगी तो मन थाने और जोरा वो जेरो लो एंट्रेंस रीना नहीं नहीं वांस तो की तोंगे रोक ऐबा का फॉर्म फिलअप खलाई जाग रोक नरक निभागी जुलाई ताल में नौ तारीख जुलाई सांगरोंग शाला बीर बिक्रम मेमोरियल कॉलेज अब निभागी थाई रिजाखा एंट्रेंस निभागी डेट का रिजाखा ते फूंगी दामचिशा निशिमी दामसा जरा पियाबा रिपोर्टिंग टाइम हिंगे फूंगी दामचुगु तामी शोधी थामचिनी बिशिंगुनो नरक थांगी मासोगीने आज जगाव नरक एप्लीकेशन ने आईडी अब रखनो तलांगी लो एंट्रेंस ने नरक तबुखानो जरक नरक नि जे आईडी रो कलेक्ट खलाय एबा खबर डाउनलोड खलाय करो नरक कलेक्ट खलाय दि आबनो गारिफानो आनि थानियो ते कायसा अजराव तंगो फाइनाय नैचिनै सालमारिओ खार्चि मताय नै आबनि बागै आफ्रु निसिमि फाइनाय नैचिनै निसिमि नैचिसार जुलाई जरा खार्चि तेर अंगनि फाशिं थाङै दङ आबनि बागै गोबां मा लुवाजिमु हुकुमु मुकुमु पान्दान थै लुवाजिखा चिनि त्रिपुरा हास्थायनि बरम गोनां मन्त्रि अख्रा प्रफेसर डक्टर मानिक साहा आव अबंख बिसि बुरुम बुरुम न साना थाका अंकै चतुर्दश एबाखा बिब्रि मताय आ जागाव अंगमानि सं नुगजागै दं फिया गोबां मा आ जागाव नरक जे थांनाय मानाय रक एबाखा नायना मुसुंबि दं नायरक थांनाय माननाय अ जुलाइ तालनि नैचिनै सालमारिनि सिमि नैचिसार जुलाइ जरा गांगे हायनो हाय देगायसा अ जराव जेरक नरक ICAT बेडेक नुको नरक ऑडिशन दिनानि बागै वान सुगि तनाय रक नरकनि बागै ब ककतुमा काहाम नरक अ तालनि पुरा जरा न जरा तंग एबा खबा ओ जुलाइ तालनि थामजिसा जरा त तंग न आबुन करि फिन आगस्ट ताल ब तंग अब हाय जरा जे मानान साइ मानानि मुसुनाय रक नरक वेबसाइट थाङै ICAT.tripura.gov.in थाङै नरक गोरोङै माननाय ते जानिजा डिस्ट्रिक्ट थाङै नरक आरो थाङै मालाय माननाय ओके अजराव किसा नरक नर सावि बरिनाय नबारथिबानि हालक तिनि नखा किसा मगजाक तंगानो फेरांखौगै जुदा जुदा थायो वाते वावानो सालनि तुंमारि तिनि इंगानो थामचि दक डिग्री सेलसियास निगानागिनि तेइ तंगानो चांगमारि नैजिस्नि डिग्री सेलसियास नियानि जे तुंमारि थामचि दक पइन्ट दक डिग्री सेलसियास तेइ जे चांगमारि नैजि दक पइन्ट ब्रै डिग्री सेलसियास नबरते हकुनि बांमारि राव रा तेइ किसांमानि मारि दक्सिब्रै फियाबा फुंनि दाम बातामै सति थामचि जरा वाते वाखा थाम पइन्ट चार मिलिमिटार फेरांखगै जुदा जुदा थायो वाते वानाय हिनै हजाख्लाय रेजाखा नर्थ धलाइ गुमटि सालथां सिपहिजला तेइ साउथ डिस्ट्रिक्ट फेरांखगै वाते वानाय हिनै हजाख्लाय रेजाखा आसोक जरा

0: आव जंग थांते थांते चीनी या फाबो असिक जोरा करी खाबा जंग मा बचाला शिनाई तिनी नी ओ पांदानो संचाखा ते कम थिंका आं शिमा ते आनी लगी
1: आं जिकाश्मी
0: हाय के जतनो न हामबाय फिया थांनानि सिगां जों रचापुं थायसा खाना लायानो तिनी नी रचापुंगो खरांग रिबानो उषा देव बर्मा

मंत्री बक्रक नरेंद्र मोदी मिया गुजरात नि सानंदाव सीजी सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर एसेंबली एंड टेस्ट केंद्र न चेंगी रेखा अब स्नामाव रंग बायखा खक्स निसी स्नि साय बारा रजाक निबो गोबां रां अब चेंजाकमा बाय आरो बिसाव बारा रजाक चिप्स नामै मानाना अब मालखंसखौ तारना खबै जुदा जुदा स्नामखर सामुंग फनांजागोन सानंदाव मंत्री बक्रक गताल तांगसे बाय स्नामजाक अ स्नामखटन बेराय नायखाथाय आरो सामुं तांनाय रक बाय कग्लाम छलायखा कन्द्रिनि मन्त्री अश्विनी बैष्णव साका आरो स्नामै तिसाजाक मेड इन इन्डिया चीन जापान आमेरिका ता युरोप रहर जागान अब बाय भारतनि तांसे हायुंग सिनेमं मानाना मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदी मिया राजस्थानी पसपदार खक्सा रासाय बा साय रेजाकनि बो गोबां रांनि हामख्राय गोनां तांबोतांनो सेंगि रेखाथाय हलंथं गाहि रेखा अ तांबोतां तांबेखरेब सकजाकनाय रेखालायमुं ताय सामुं मानथग्रुमुंग नांमा बारजाय आसाखाना मन्त्री बक्रक जोधपुरनि बिरखं खलानि कोताल टार्मिनाल न बो सेंगि रेखाथाय हायुं कोताल ग्रीनफिल्ड रिफाइनारि ताय पेट्रकेमिकेल तांबोतांनो हाखतरनि बोखा याफारखा मन्त्री बक्रक ककनारुकमाव साखा अ तांबोतांनि सेबबाय राजस्थानि स्नामखर रांबक्सिमुं ताय सामुं मानथग्रुमुंग कोताल सेब फियक जागाना मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदी खाना निसिमी नखा सालदक नि बागै इन्डोनेसिया अस्ट्रेलिया ताय निउजिलेण्ड बेरायमाव थांगान बुहार नायखुनि सालका बेदेकनि तांग्रा रुद्रेन्द्र टेन्डन साखा जुलाइ तालनि दक निसिमी चार सालमेरै मन्त्री बक्रक इन्डोनेसिया बेरायमाव थांगान बेरायमा जरा मन्त्री बक्रक प्रेसिडेन्ट प्रभु सुबियन्तो बाइक खाक नैनि कक्लाम सालायानो ताय जाकार्ताव भारतनि तंनाय रक बाय सानजा पान्डा अ मानजागान जुलाइ निताल नि साल चार निसिमी जुलाइ तालनि चार निसिमी चि सालमारि व मन्त्री बक्रक अस्ट्रेलियाव बेरायमाव टंगान व आरो अस्ट्रेलियानि मन्त्री बक्रक बाय जुदा जुदा नांकुकमा बाबाया कक्लाम सालायन्थाय भारत अस्ट्रेलिया सिइओ फोराम म मानजाकना कक तंगो बेरायमा पाइथागो मन्त्री बक्रक चि साय सिसा सालमारि सि ताइ सि सा सालमारि निउजिलेण्डाव बेरायमाव थांगान बुहा मन्त्री डक्टर एस जयशंकर टेनि निसिमी हाकत किसासो काटार बाहारायन कुवेट ताय उमान हाफांनि ओंगै बेरायमुंग जेंगाना अतालनि सालसि सालमारि जरानि बिनि अ बेरायमुं सालथां हाखतरनि बुहा मन्त्री ताय आबो बाय बाक्सा खतर अजारक बाय मालायमाव अ आमसायनि बेबाक हामख्रायना तै कक बिति कक्लाम सालायना उमान बेरायमा उल सालसि थाम जुलाइयो निउयर्क थांगोन आरो जातिसंघनि नायमोथां नायमथानि पान्डाव मानजाकनानि कक तंगो आबोनि उला मोसां जयशंकर सालसि ब्रै ताय सालसि बा जुलाइयो ब्रेसेल्सो फिल्ड थाम भारत युरोप मथा बानिया ताय तांसेप मथानि पान्डाव मानजागोन ताय युरोपनि इउनियन ताय बेल्जियामनि बुहाती न तैयै मन्त्री ताय आदं संबाय कक्लाम सालायानो सालसि सालका आरि रेलवे सालसि सालका हास्तिरकनि बिसिङ अबन पुइला मेमु ट्रेन सेपसाप मिया आगरतलानि सिमिसेंग्रेखा मन्त्री अग्रा प्रफेसर डाक्टर मानिक साह आगरतला रेल स्टेसनाव बानानारै आगरतलानि सिमि करिम गन्जरा मेमो ट्रेन न सेंग्रेखा अ ट्रेन ककपि सालन कारै बिसकांटां साल दक सालमारिनि सिमि सयावै सलिबान पान्डव मन्त्री अग्रा साखा हास्ते रेल थांलाइसनि सेपसाप डाक्टिन सासावै दङ आसामनि चन्द्रनाथपुरनि सिमि साब्रुम जरा रेल लाइन डाबल लाइन खालायना बागै सार्भेनि सामुं पारि जाखा स्राय स्रायके प्रजेक्ट रिपोर्ट रजाखा यां जिरानियानि सिमि बुजं नगर जरा कायसि ब्रै किल'मिटार कटार रेल लाइन सिनामनानि सार्भेनि सामुं सलुयै दङ बसाखा हास्ते हाफांनि बोखाकते आगरतलानि सिमि जम्मु पुरिताय गयानि बिसिंग दादाक सिदाक रेल सलिनानि बागै रेल नायखंन कयमुं बलाय रहर जाखा अमृत भारत योजनानि धर्मनगर कुमारघाटाय उदयपुर रेल स्टेसन न कतालखे स्नामनानि सामुं चलै दङ अबनि बागै रेल नायखं खक सुकुसिदक रोजाक दक्षि रासाय रांनि गसिमुं रोजाखा पान्डव मान्जाखा रोखामु मन्त्री सुशान्त चौधरी एमपि राजीव भट्टाचार्य एमएलए मिनारानि सरकार लामदिं डिभिसननि डिआरएम समीर लोहाने श्यामा प्रसाद मुखोपाध्यायनि लांमानि नाहार मुंथाय बसंन हामजाक मुंनि वानसुक मुंतिमिया आगतला टाउन हल प्रदेश बिजेपि जुब मोर्चानि चेतन बाय सोरोंनाय रोंनाय ककमा लमिं पान्डा संसाजाका अ पान्ड डक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्यायनि लांमानि वानसुक मुंन तैयै शुक्रबै ककनारेखा मन्त्री अख्रा पान्ड कुबुनि बिसिं ककनारेखा एमपि राजीव भट्टाचार्य आगतला पुर नायख्रायनि मेयर दीपक मजुमदार प्रदेश बिजेपि कास्को अभिषेक देवराय जुब मोर्चानि

आज जति नरक र सामु खाना कावर सामु छाबो बाहिर सबजा र सामु नरक कक्टुक बाई करुण हदित 3 2 6 2 5 3 कक्टुक नंबर मोबाइल यूजर 03 81 अकुट नंबर नानी तापुक दी चीन स्टूडियो नि कक्टुक नंबर खोलो करे जाका और सामु छाबो बाहिर सबजा र सामु

शाखा ते फोन पाइप में या सकले या जे खरों में पुलिया शाखा लक लखपति देवब्रह्मा भाई रसाब जागर सामने ना खरों में न्यो बेले बेले हम भाई का का हम या फरो आगजवानी फाइजिंग ते तबुने बेसे मोते तंसा रसामुन नरों में बागे और रसामु साबाई रसाब जागर सामु खनादे

0: rasam nai mung tamong khana kisawan chogoi call khale 232-6253 kokdung number mobile user 0381 aw kut number nan tapok de or rasam nai mung kha khale narok sai manai tongna bokhaw kisa khep khep mungai tongna sada chakha sa saya wan chui tong khana phia nung samani abofan ngai mano khoroksan le chakha ausuk joti ke sior sairi mano khoroksa je sanai boni le chakha pe sabuni chakha tabu khano sair kalaiya ko norne kol ja sakin mane hello hello
1: hello
0: lamsago sabunka ta bukho
1: aro samai ankhai no
0: Bisholoki ni ni uchini mong sagare de
1: Simnani
0: jan prati bukhuk jan prati nembo tini chachaka abo to nung sei manchi nai phyang saklaine saklaine te kaisa kolya sang nai bakhadak de phya aur sabne ni mong tamong khana 2326253 kodduk number mobile user 0381 kod number nan tapodi khoroksan le chakha phya 100% no chakha khoroksan chakha phya sabuni chakha sabuni chakha और सब नहीं मूंग के जानी चाखा सिपाही जला दिस्टिंग ने बिशिंग ने खरक से कॉल खलाई नहीं चाखा सिपाही जला दिस्टिंग ने बिशिंग खरक से नहीं चाखा हम पानो साबुनी इंखना जंपु चला नहीं ताको बिशुराए पुलिया साहनाए ताको बिशुराए और सब नहीं मूंग का पुटी दे ब्रह्मा भाई रसाब जाग रसाम बेले बेले हम भाई ताको बिशुराए नो बेले बेले हम भाई साई मामन बागी ने ते ते जो तो साई चुक नहीं नो बेले बेले हम भाई नर्वो साई तो का फिया बा और सब मूंग बाजी मत खलाई फुनो का ताको बिशुराए जंपी जलन चिमी हाई ना हाई बेले बेले हम भाई ताको नो Tamu ni bercakap tentang sahaja samung tamai nerung ni bagai orang samung sabai resap jaga samung dodi fat fat ke call khalai di, tay nerok Saudi orang resap jaga samung sabai resap jaga samung

0: थाप आं ककतां अ जगान पाइखा
1: ककतां खनामानि यागुल सिं ताबु दैतांसा कथमा खनालायनाय सिंनो कथमा साइखनारैनाय शर्मिका
2: आं कथमानि मुंखे सिंह बाय सिंज सारसा सिंह मासाबु फांतलावो न बारसिप सिप थुय दंमानि आंबु फांतलावो न सिंज मासा बिनि हाकरनि अंखरि खायसिकते खायसिकते सिंहनि गोमबलामो हाबै रेखा मनि बागै सिंह सिजाय थांगा तेजलि जागै सिंजनबो थारना नायखा

0: ni nimba kan rongas gatsung ka hama kan nugi engka se ka ham de tong ke i na ni ba engka i hi se man ju ta bu ka
1: ta bu kan ke sinina bo umor bo ka ba ki sa sinina nu tu khata
0: ago
1: ke ni ni umor ok le bu sing khana pula sagara
0: de ao ani umor ba 1934 nei ko abo kagojot tongma ba 1934 Type of legend, Bongo Hamber, mad nebula.
1: Oh,
0: can I don't know? जे आनी रिसम रोग था दासा तुम सो को रोग जाबिता मंखा इनके न रिसम तो ताम तो गो को तो गो बासी बुसरें गो गो बुतु सरें गो इनके तबे ओ सरकार जोखन ते चीनी संसराय फिर तो भारत सरकार उनको से कांग्रेस इनके कांग्रेस न चीनी भारत न स्वाधीन तो सर्वे कतल फैके हैं कि ना आनो सीने आम से नी प्रदान ता बाबू चीनी पांडवों की शा नंगमार समय दो ओम तो दिनो मुझे कता के रजमन ता के को वंजी भाई रजमन बा को वंजी में रजमन ता
1: ओ आजोरा रोगो को वंजी भाई रजमन नहीं अब तो नंग जोनो सब थमी रजमन क्या
0: तमर को दे जोन सब ने अच्छा भी तो
1: नहीं नहीं उम्र अब बुशिंग का ना अपुर
0: ओनो अपुर ओ मा बसर बते से कन्या नहीं खेता
1: ओ मा कह तो आखिरी जोन नंग नहीं बाबू नारो सरंग मानिंग का कि नंग चौंग परेंग सरंग
0: अब अब चले पुरन खबर
1: चले पुरन खबर कि चौंग परेंग तो बाक्सा नंग मानी कॉलोग मानी ना वो
0: बोल मैं बजारा कॉलोग नंग मा सरंग दो कह बो कह
1: तो इन्हें
0: ओ यासी से आहे के सकले थंग के बाथम जाय उजुम माया आहे के सकले माथंग ते केरे केरे तियरी हने के तियो बसने थियानो के बाथक पने न जागा रक
1: करिंग मन राम सुख में आता
0: है और वासी बाथक न और वासी बाथक न गत ठीक खिकले मिया का बारते बारते बारे
1: तब ओ जागा फाइसा
0: ओ जागा फाइसा बताता
1: है के बारन के तिना बु सुविधा
0: के बुदुक बो अप्रूव बांगिया बुदुक कबा हुन कसे आनी सम मते सुर बसक कोतक बसिन कासा बसक तल बसिन नखर के मैं बुदुक बांगिया का कोजो कथा ने बो किसा कम होयो तोला नख पर कम भयो के का तब के ओ गीता रखनी नख का हंकबा आ भाई कन कोने ताम खाता को
1: जे गिटार हाइकेनो सुनाम का निन जे चोंपेरंग सरंग मानि नि बाबुन जाक नि चोंपेरंग तो कोलोक मांग कै आ कोलोक मा चोंपेरंग प्रो बसक माने ता काई बसक बुदुक तोंग
0: आ प्रो बुदुक तोंग थाम
1: तोंग थाम काई थाम
0: आरन बेसिन सताय ओ को तोंग निखा हमन सुरखले तै तंसा का को सामा खलाय को सास खलाय
1: अब तबक तो नुमानी म त निन र तामानी तामानी काइनिङ ना

0: अब किन सुरंग बानी आफ्रो पुल्या मास रंग
1: आ बाबु हाय के तान खन रुटा के आंग अब न मास रंगता
0: अब न मास रंग काता पुल्या मास रंग मानी
1: के अब खा बाबु खा छाव अब बुगु हम दम दो अब खा मास कथा मास मानी पुं अब खा बा को मास बार पड़ मा पुं या हेर खन सगाता के था कनेता
0: Kenita
1: mana
0: kita? Abang kan kau kaisang kau mai sum mai kau tahu cuma ni. Kakak yang
1: gola bayla ha,
0: amak gola bayla ha. Ah, resapi bukan ada, tamai bukan ada ni. Kekisah.

0: और सम दो कोविन आ 12 धामा तो बने थाने तो केब खजन केब फिकुन करी जो तो निनो बने बसा
1: हंके सन्न खाइर गोई जेदि खक्सावो कथालाय तंदे हने सनसे कथालाय मलाया आ हके न आरो थले के पंगुरो थले का पंग आ जाय तो जाम से करी हन जे सग्नि फन थले
0: आबनो आ जेसे फन नंग नंगो बरो गाम बरो
1: जतनिना

0: अब बेलै खाना त कुबुन्य जेसपन मान्थ बनोले साना नि कग्या
1: अब खाय अब सुजन नै तुलन ए कसे करे असत्य
0: सुजन नै त मोसा से करे
1: बबे सुजन नै करे असे बारिका
0: असे के काम अबन बबे ने के मुंसा बु बुनो साजन नै कग्या न अब बु कक छैन जेसपन मान्थ चं साना बु कग्या Rang dong mana kau sayang tini rancang mana fikir rang lama wah kau back sekali sama mana fikir aku dong mau saya beli
1: kau kan cerai perubah tasha sur si kon bersab tu
0: tahu kau
1: yang bersab tu yang semana tahu kau yang semasa tu sih
0: sakau
1: bahin bah lemu masa kata ke lem ke kisah interest kau main jag tu tak kena nero
0: अब तो उमर भाई बाक्सा बाक्सा अब है नहीं थे बयस बांग थे गई जी रसा मूंग रोकन तुने तब के तुरे तुरे और रसा मूंग रोक भाई ना लोको भाई सीनी जाका
1: के बो
0: और जादू हनमाले और रसा मूंग भाई नीनी जे सामान्य जे शिक्षा मूलक बा फरंग मूंग अब है रसा मूंग के
1: तब सुन तब कि भविष्य निभागे हिनी सुन सरगम ना kaham lama himdan bagai nai ko tong nai rok ni bisingo baksa om hain thango jemon sadu bazarat agi himprobo sadro betong ke sadu nu om thango do ika siko rok betong ke siko mi thango ako bor chalai bile sadu bazarat ka thik tabo wo chen sere no u bor kaham be kathale tong nai abo जरा कथाएं तो कथाएं दोंगो बो बोरो बुखाव होता दे बक्सले तुम्हारे दरार रुक्सा फूंग ना कतोग रकम खाने रुक्सा फूंग आई खिलाई नहीं
0: है तुमने मने पे
1: को बोले दोंगो का जान जब जे मुसुम पे इंगलाई दोंगलाई हो अंकाई बोतरों ना सुन akol kaham angsi samung basable akol saham yang ka sam ba ki sana ba akol kaham angkha tumu wan sum mate jane sam angka nang borot tangi san bagine ane nang musum go angka kaham ka pore u nai soi ni malik ni ma kai ba dang nang ye ble
0: bo ma bo phani mu khang chung ri kha do phani mu khang bu chung ri kha
1: se ri kha
0: o baro dha ko to ni mu khang bu chung ri
1: ni ji ni
0: dong kan ni na ra sa mong na chung khana la ni ke ka bang ta ku dai bu khu son na ro khai tong tinin na roi panda tinin na roi

0: कैसे संसार खाका माने नो आंखिनी नों खैयानि जेसमा नों थों तारमान लगमा जेसपा नों थों तब ओजन बासै नों खानके बसिला संसार तै आ आसुबि नों खानके खुत्रु बेरा
1: तै सिक्रेटा
0: सोता सिक्रे आम हाइवान सुख आंखानके आफ्रुन नों खों कजां कजां नाय आबन सै सिखान नों खों कजां कजां लिया
1: बरे तै
0: बुइबाय सोलाय खानके नों खों कजां कजां लिया हाय दादा दु गे कक दु रिकॉल खलाय दङ यासनि ने नै जदि बर त कक खानम मुसु मुइ दङ
1: निकर त बु कक भायो सारन के गे आसे कक बं सायबो आइ यास गि
0: दसाय पा गेर दि
1: कक नों तासिन साका किसात फातर कक फातर थाना ब बुझन हमरा गो हंकाय त कैसा बाय त कैसा या हे गिनो त बु जंजाल कलाज त खालाज थाना के हंके
0: जे तोमनी अबनो न
1: ए
0: मा भगवान ने किसान को दिया
1: मा भगवान से या फमन न बबन तम ने आहे अंग न के अब बरो बंबरे बे किसा पर मदो मन गया बखानी न तम हाया हंकाता छै मा फन मुंग का हमनार न नाया
0: एकदम कुबे कक दु फाइ तंग या से ने
1: आप से आप से
0: हेलो
2: हेलो
0: लाम सगो सबंग का
2: दा कतना फोन का
0: कलम का लाम सगो बोरन छि मि कॉल खलाइ तो मानदाय नि सिमि ए सबंग का
2: ना
0: हां दा सादी ताको
2: आ बाबु न पर खाना पास ना तो गो बता दो ये करागा को तो फगना न कर समता
0: नहीं बा बा बा ओ
1: बोती हमबाय हमबाय हमबाय पे प्लीज जात
2: गाना होय बा सब मखे बा
0: गाना बनी रसम खदा खना तो जका सादे आ
2: तो खना तो गो
0: हां आ
2: तो सब मखे
0: बा बा बा बा बेले बेले बेले हमबाय
1: अच्छा
0: न न आते कुन कॉल भैया सरी ने ना न बेले हमबाय हेलो
1: न न न खना थक मा बा आनी बखाओ खातो
0: हेलो
2: हेलो सर हम विशाल सर परन जब जला दिशा से परन को ले बदल में खा रहे दिशा
0: ए दा सादे
2: हम दिशा जान कहां पर खाना में गले जैसा सोरे को गरम न हो हम जैसा खाना हो वैसे ही पर खाना में चले
0: आ ताको नि नि नि खरंग किसा तरह तरह के सादी खरंग ने दा सादे
2: हां हम दिशा रंसा ने जब जला दिशा रंसा ने मुकुम ले बदल में जान जैसा सोरे को तो
0: हेलो
3: हेलो
0: लामसगो साबंका
3: लामसगो बरकाटा आंकाउ बरकाथा ने उकसि रवि
0: ए बरकाथा ताखु रवि छाडी
3: आज जा तिनी नंगी बेतर सबे अब तो दोहने यासा गय म बा म माके न खना तो जा खाबले
0: बेले हमाय बेले हमाय आंगले रसम रसम ने कोनो आमर ग्लेस हेमा जाया ताफन दादु बने रसम लग लगी किसा रसाब हिंगा का आमो रसाब खा आमो बेले तुम ठोका
1: तुम कसे तेनी सले
3: आबंता
0: ए दा बेले हम भाई
3: दिवर कहा
0: दिवर कहा बेले हम भाई
1: ठीक है तबो
0: है
1: रफिन ने
0: आओ रसाब नहीं ते कैसा कॉल तो हो काटो कॉल
1: हेलो
0: बाथा
1: गितंग या मले
0: हेलो
3: ओ हेलो सर
0: ए
3: पहला बंग
0: पहला बंग ने
3: सचिंद्र
0: ए पहला बंग ने ताखुक सचिंद्र सारी
3: आनी मुआ से कलाई लोग सब गया
0: ओ निन मुआ से
3: यान मुआ से कलाई लोग
0: अच्छा
3: निन जान बेले बेले खाना तो मार खाना
0: आओ गाय बेलाय हमबाय कॉल खालाय माने बागिने
3: दिन दिन दिन जादो मला नि सख खनार काबा
0: आबो खनारि फायका दो
3: ओ ओ ओ
0: दा कन लागि तंग दि बेलाय हमबाय हेलो
4: हेलो
0: आ लाम सगो सामन का ताको

0: Dibur kaham da ko tana
1: Dibur kaham tru tru ke chadi kicha
0: ko ang khai langa puru mi
1: pere pere bhai ta yang
2: chatoni kok sakang ke pere pere yang phayo amun bagino hello and jatno 9485007172 call khalagi aro no hello
3: hello
2: ah lam sobo Shabanka?
3: I am Chargoriani Bishuloki.
2: Chargoriani Buku Bishuloki, sorry.
3: Rutam is a crazy
2: man. Canarino Tongo, Chini Narwayo, Chini Taco, Murasap Krum, Chini Dado Sodago Tongo. Konosunga da Musulman. Hello? Hello? Hello? Hello?
0: Hello?
2: Kanaka? Kanaka, Kanaka,
0: Kanaka. I'm telling you, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. वो गन्नो वो काम के रसाबुने द्वारा बोली बोल मानी था क्या जब दिन रसाबुने किसान खाना नहीं सुनता
2: हाँ दागन निने छिनी मुंह से सागर देखी जा
1: सोमती गन
0: और जंथा कुर कामी ने मिलन बेबल मा
2: आ और जंथा कुर कामी ने ताकु मिलन ऐ दागन बेला हम भाई और जंथा कुर आ नंचिदा छिनी दादो और जंथा कुर हसुक खुरी
1: अब चीन और जंथा कुर चीन पहले अक गंगरे भोसलंगो
2: ए अब नो हासुक खुरी वो हंजाग में
1: तंग संकम बमु
2: ताको मिलन मिलन
1: मिलन
2: वो सहमन हम सुमाने जब निम दिल्ली वो बुर रसा मुंग बाई के नग लोगों ने खानो कसम रखा बुर रसा मुंग लोगों रखा
1: आ आ सुन तो आंग तो कबमन रसा जा तब हंका संगति गन मंग रसा बुदो बाहे बात जाते बनो वांजी हलम ही है जातु सिंबस ही है आहे रोगने रसा फाइटा Okay, apatik mang rasa bunyam payu. Okay, oh Hindi, maya ba bui beka kok salimam dia ta asisi kok.
2: Apa no no cap talang tangga?
1: Apa to talang nanti officer rum talango. Okay, tabu pasal sengket ini menteri to aku bela. Oh tabu kon, thinai. Okay, oh tadi अब मंदिर बंग समय यंग तो करना है
2: आगे नहीं
1: उन्हें सरकार
2: आ बो बो तंफ्रत
1: बोनो बोनो सही रहता बुमो
2: आ ओके दा नहीं दोसा बुद्धि आर जी
1: अच्छा तंगरा खुदे तसिंग ने अब ना
2: आ ते तंग सर रसा मो
1: तंग खुबल ते
2: खा बिसिंग बिसिंग
1: अब तब कुल कुछ ही कुछ वाटी फंस तो
2: आ कुछ वाटी फंस आ आ दा
1: तक करो दी बिना खाना ना मुझे बाबा ने खाना हमले
2: आ दा दा दा
1: आंग तब कुछ वाटन सिंग Wati pengen sama,
2: enggak
1: bantai bantai ke rumah,
2: bantai bantai ke rumah sama lagi sini.

0: आंखे कोई बोसे गंग के भाई दी आसु भाई दी
1: तम समुरोग बो नंगजा नंग बा बाय ओसिन लोग नि मरोग नि यागो कसा रिहोर हमले किसा सानानि जरा भाई थांग भाई थोन न
0: आओ

0: नंते आना खा खाम फैलिया आनी थी लामाओ कैब नुगे बाजा फैलिया हिने
1: आओ पुनी आं सुमायखा आईन खा खाम फैलिया नीनी टोंथा लामा आंते कैब नुगे बाजा फैलिया पुनी सुरु सुरु थैना निजार सिमिन आंते विशा नीने खाना लाइफेने अमना पैठक कमना पैठक सुमाय पुनी आं थका

ब्रिक्स आदों हाक्टोनी हाफंगनी उमर गनां तांगफां रक अ फांदाव मानजागने बरक जुदा जुदाव ब्रि रक्न फान गनां ताय बरकनी अजा अंगमुंगनतै कग्लाम सालायने किसासक बरक नांगकुक नांगसुकमाव सुबा लाइमा ताइबो बांग्रनातै ककबिति रक्न अ कग्लाम ब सालायने फांदाव नायकुलमुंग ताय ब्रि रक अजा उंथानी मानजुकमुंग ब्रि रक्न डिजिटल ताय रां थोंग खपनानि दारा खामारि ताय नबातिबार फेरमुंग नाइमुथां ताय चामुं काहमो ब्रि रक्नि सामुंनति ककबिति रक अ कग्लाम ब सालाय जागोन AI एबा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कमथिंना एबा नाइकुलमुंनि याप्रिनतै राष्ट्रसंघनि पहिला ग्लोबल डायलग्स ग अमानजाकना बागै केन्द्रनि बुइहा मन्त्री याक्सु कृति बर्डन सिंहनि अजमाबाय भारतनि आदं बदल कायसा खोना सुइजारल्यान्डनि जेनेभाव थांगोने बुइहा कक संलायनक साका ग्लोबल डायलग्स अन AI गभर्नेन्स ओंखा राष्ट्रसंघनि गसिजाक ताइ गोबांमा दायलाइजाक बेरामनि दांसा कायसा जे दांसा जतनि नायमथानि ककटिसामुं बाय खाजाकमानि बिसिनै साय निसिब्रिनि सेप्टेम्बर फेक अफ द फ्यूचारनि बोखाक ओङै ग्लोबल डिजिटल कम्पेक्टनि बिसिंग अ साक्थारमुं नाहारजाका केन्द्रनि पेट्रलियाम ताइ गेस मन्त्री हरदीप सिंह पुरी साका इथाइल कुनु कोताल खाकामुंया ताइ अब बिसि सारानि ब गोबां रमै अबन सामुङो फोनांजागै फायै दङ राजस्थाननि लोको कथुम लाइमुं कायसा पान्डव मोसां पुरी साका हाफां गोथांनि मुसुं जाखनाय बुलमानि सामुं बुतांमतै खामुं गोनां ककटि सामुं न लामसग ब साका मेथेबै साका हाफां अबनतै ककबिति कग्लाम रक्न बरकनि सामुं बुतांग खपनाय ताइ नांमानि सिनाम फिरनाय रामनगर स्पोर्टिं क्लाबनि साक्थारमा बायदिनि बलंतेर कतरनि सामुं बुतां रक्न रोखसावै फांसारा कायमानि फान्दाना संसाय रोखा बलं हालं रक्न खाथुइ नारोखनानि अककतमान साहरै रोनानि बागैन साक्थार जाका अ सामुं बुतां अकक्न साका आगरतला पुर नायख्रायनि मेयर एबा एमएलए दीपक मजुमदार बदाल बिदाल बेरेमनि फांसारनब कायख्या ताइ जतनन कयख्या गोबांखे फांसारन कायै बलं हालं रक्न ताइबो खाथुइ नारोखनानि बागै अक्लाबनि ओङै साजाका थिनांग हाइन अमहाय सामुं बुतां रक सया उइन तंनाय पान्डव मानजाखा अक्लाबनि तांग्रा चन्दन चन्द कासकु बाबुल राय आकसं आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि अककतमा खनाय तंबायो आकाशवाणीनि ककतमा अपडेट माननानि बागै लगइन खालायदि www.newsonair.com न्यूज अन एयर एप्स ताइ ट्विटर बाइ फेसबुक नि प्लेटफर्म एआई आर न्यूज एलर्ट्स यूट्यूब अब नाइडि न्यूज अन एयर अफिसियल अब आबन कारिब आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि कक्तुम अपडेट मानाके ट्विटर एब एक्स हेन्डल आकाशवाणी न्यूज आगरतला फेसबुक एआई आर न्यूज आगरतला ताइ यूट्यूब अब आकाशवाणी न्यूज आगरतला नायना नांगोन मन्त्रकर प्रफेसर डाक्टर मानिक सा साका आगरतलानि हाफानियानि हायुं बेरेमनि बानि खलाव अ जुलाइ तालनि सालचुकुताइ सालचि सालमारि अ संसार जाखनाय डेस्टिनेसन तिरप्रा बिजनेस कनक्लेभ 2026 अट हाइन तिनि बेरायनायखा बेरायना थांका बेरायनाफ्रु बेरायनायफ्रु ब ताबुक तियार ओंगै कंमानो नायखाथाय गोरोंजाक तांफां रकबाय कग्लाम सालायमानि पान्डाव मानजाखा मन्त्रियाखरा साखा अ कनक्लेभन तिरफ्रानि खबजाकमुं सरनाय ताइ रां फोनां मुंनि बिसिं तै हामक्रायनि मारि खालायथि साना बागै हाफां कक रोजाक बटाइबो साखा हास्थायाव मजमो रां फोनांनानि सेफन सामुङाव फोनाङै हायुंनि बुसखाङाव रमैथि सानानै दांसाङै बासावनो अबबाय रां फोनांनाय सोनामखर बुग्राताय रायदा सोनाम नायरक थानसा ओङै तिरफानि रां थं हामारिअ लामा गोदालन तै कग्लाम सालायनो आगरतलानि सिमे आसामनि करिमगंज जरा सोंफेरांनि मेमु ट्रेन खोनाफुंनि सिमि जराती लाइसुनाय मि आगरतलानि बादारगाट रेल स्टेशनआव पान्दा कायसानि बिसिंति खे मन्त्रकरा प्रफेसर डाक्टर मानिक साहा साका साहा बाना फुनुगै अ इलेक्ट्रिक ट्रेन न आगरतलानि सिमि सेंगै रेखा अबनि बिसिंति अ ट्रेन ककटि साल न सालब्रुम ब्रुम फुं दामसिनि तामै सती नै सिनि सिमि आगरतलानि सिमि करिमगंजनि बोखाग लामरवानो अ ट्रेन डिपो

0: जो सर पर रह गया भूल जाओ उसे, चलो वापस।
1: आपके पैर पड़ता चाहे
2: मैं जाऊंगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माही और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नौसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

0: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोह में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदी ईदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल

0: मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थ यात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थ यात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया

बटलर ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।